जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नु पकड़दा। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई

सानू इन्हां चीजां दी लोड़ नहीं, पर सेठ कहन लगा जद मैं सारिआं नूं दान दित्ता है तुहानू जरूर देना। दसो तुहानू किन्ना सोना दिया, दूसरिआं नूं कि थोड़ा सोना दिता है तुहानू मैं ज्यादा सोना देंगा। क्योंकि सेठ दे मन विच अहंकार है, इस गल का माण है कि मैं बड़ा वड्डा धनी हां। कहन लगा नामदेव दसो तुहानू किन्ना सोना दें। नामदेव जी मुस्कुरा पे ते समझ गए इहदे मन विच अहंकार। कहन लगे भाई असी कुछ नहीं मंगना।

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर सा

गर्भ भी वह दान कर देवे। पर भगत जी कहते हैं कोई बनास तप करे तीरथ से मरे हवन कुंड विच अपने आप नूं साड़ देवे, असमेध यज्ञ करे सोना

देव बदलावन दे। मैं ते इक रमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई, जिस अकाल पुरख ने, जिस रमैये ने ए दुनिया बनाई, ए देवी देवते बनाए, ओदी पूजा करो। क्यों कि जे सारे बनाने वाले

पलक ते गया पाताल नानक, नानक बिना जहान दी दिशा कोई ना, मशरक मगरिब जनूब शुमाल नानक, कदे काशी ते कदे प्रवेश मक्के, बनया सारे आंदा सांझी वाल।

शीश दिया पर सिर ना दिया। सच जिस दे अंदर सच वस जाए वह सच नूं कुर्बान नहीं होण दिंदा, अपने आप नूं कुर्बान कर जाएगा। उसकी जमीर नूं कोई खरीद नहीं सकता, उसके ईमान नूं कोई डुला नहीं सकता। पितर बाणी च क्या है, जे सच की छुरी होवे आखो वाहिगुरू, ते सच दे लोहे तो ही बनी होवे। मैं फिर बेनती करा, जे सच की छुरी होवे सच की काती, ते सच दे लोहे तो ही बनी होवे, ते गुर शब्द की साण ते तिखी कीती होवे आखो वाहिगुरू। फिर गल समझ ली, सच की छुरी होवे ते सच दे लोहे की बनी होवे, गुर शब्द दे साण ते तिखी कीती होवे, परमेश्वर जो बेअंत गुणा वाला है उसके गुणा की म्यान विच रखी होवे आखो वाहिगुरू। ऐसी सच की छुरी दा काओ जे लग जाए ना, अंदरों लोभ रूपी खून बाहर कढ देंदा है आखो वाहिगुरू। उसके अंदर लोभ नहीं रहिंदा। बाकी कुड़ियारन दी छुरियां वेखियां ने वो तो अंदर जहर भरदियां ने, अंदर ईरखा भरदियां ने, अंदर दुबदा भरदियां ने, पितर जीवन नू नरक बनाउंदियां ने, अंदर जहर घोलदियां ने। उस दे नाल तां मनुख आत्मक मौत मरदा है, जमीर विक जांदी है, तकदीर विक जांदी है। जिसकी जमीर विक जाए समझो तकदीर विक गई। अन्न ना खाइए शरीर मरदा है, नाम ना जपिए जमीर मरदी है। जिसकी जमीर मर जाए उसकी तकदीर मरदी है। जे कोई अपनी तकदीर नूं बढ़ा सकदा है तो जमीर उच्ची करके, जमीर उच्ची हो सकती है परमात्मा दे नाम करके, सच करके। आखो वाहिगुरू। कहिंदे जिन्हां दे अंदर सच

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखिया? ओ ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं है। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असीं अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे।

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नु छड़ के बिख खाई जा रहा हूं। हे परमात्मा, जो तू अमृत की दाद दिती मैं वह भी हासिल नहीं की, केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता।

0: कि परमा विच मैं पुलिया फिरदा हां।
1: माया मोह परम पे पूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई।
0: सुत कहंदे ने पुत्र, दारा कहंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के, तेरे नालों प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घर वालियां नाल लाया हो।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श, तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे साहब।

हे माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सत्संग तुम ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ। सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

चंगे, हम पापी तुम पाप खंडो। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करन वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले, किवें चंगे हो? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सामने नालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना है। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे, जे कि मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है किन्ना फखर है ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने ने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए गोविंद हम ऐसे अपराधी गोविंद हम ऐसे

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया, कहिंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

जैसे सर्प दी आरजा है किसे काम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे काम नहीं आउंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे काम नहीं है।

पाया जाए। हर हर नाम, हर हर नेम ऑफ गॉड नाम निदान है, इन दैट इज द ब्लिस। गुरुमुख पाया जाए, द गुरुमुख इज गिवन, द ब्लेसिंग्स आर शावर्ड अपॉन द गुरुमुख। We have a beautiful life to have the Guru. As a Gurumukh, the blessings of Waheguru are just showered upon us. That's a blessing. Har Har Naam Nidaan Hai, Gurumukh Paya Jaye.

आज सारा कीर्तन नानक मंगे दर्श दान कृपा करो, दर्शना दी दाती मंगदे आ रहे हैं। क्योंकि जिथे दर्शना दी शिक नहीं, महाराज कहंदे ने ओ हिरदा हिरदा नहीं है, ओ हिरदा तां शमशान भूमिका दे बराबर है, उत्थे मुर्दे जलदे ही रहंदे हन शमशान भूमिका, ते ओ हिरदा ही छड़दा रहिंदा हर वेले ईरखा बखीली दी अग विच, जिस हीए विच साईं दे मिलन दी शिक नहीं है। महाराज दा वचन है, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तूं ए सुल्तान भगती है, कीर्तन दी भगती है प्रधान भगती, प्रधान भगती तो जदों आत्मा उडारी लैंदी है आनंद विच आके, ते फिर अखां तो प्यार आंसू आउंदे हन, इस नूं सुल्तान भगती कहा है। सात संगत बोलो श्री बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना पुजे सो तन जान मसान, ते जिस हीए विच सिख है, महाराज कहंदे जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तांके, ते भाई जे दर्शन प्राप्त हो भी जान, ते दर्शना दा रस नहीं प्राप्त होया तां तावी अधूरा दर्शन है। इसलिए महाराज ने कहा रस रस गुण गावो, रस रस तेरे प्यार विच भिज के, और ज्यों ज्यों तेरा दर्शन करां त्यों त्यों होर भुख बधदी जावे। नहीं ते कई वेरा वस्तु मिल जांदी है, चार दिन दी खुशी होंदी है, फिर उस तो बाद उदा ध्यान ही खत्म हो जांदा। भाई साहब नंद लाल जी सतगुरां दे चरणां विच जदों आए ना, सेवा कीती, आप फारसी विच बड़े प्रवीण सन, बड़े लायक सन, महाराज कई वेरा उसनू अजमैश विच भी पा देंदे सन, भाई किथे तू चांदी दी कुर्सी ते बह के बच्चियां नू पढ़ाउंदा सै, ते हुण ता भाई साहब नंद लाल जी दे नैन कटोरे पर आए, ओ सच्चा पातशाह ओह तां चांदी दी कुर्सी सी, तां आ जिथे तेरे चरण पैंदे हन ना, जमीन दा जरा जरा कीमती हीरियां मोतियां तो भी ज्यादा, करोड़ा सूरजां तो भी वध चमक पैंदा है, उचारण करो श्री, ते ए तोड़ी जिदे मस्तक ते लग जावे ना, ओ भी कुल तारक हो जांदा।

परम सत्कार गुसा सिंह जीओ एक जकारा सारे रल के बुलाइए बोले सोनियाल भी इकट्ठे और सत श्री अकाल भी इकट्ठे। भाई साहब जी ने बेनती करांगे कि सुर देन आओ सारे करो रसना पूछो।

साहब ने बीबियां का जत्था भाई साधु सिंह जी देहरादून वाले भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी लुधियाने वाले भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहब वाले ये सारे गुरु के गीत अरदास करते हैं कि सतगुरु रहमत करे ओदे न्यारे पंथ की हमेशा चढ़दी कला होवे ताकि ये पंथ सरबत का भला करदा और सरबत का भला मंगदा रहे। आओ सरबत दे भले वास्ते आपां कुछ समां रल के सिमरन करिए और नाल सिमरन करदे हां अरदास भी करिए।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु